दाल की गावक है चश्म नाज उसकी, सुना है दर्द की गावक है चश्म नाज उसकी, सोहम भी उसकी गली।

सुना है रात उसे चांद तकता रहता है। सितारे बामे फलक से उतर के देखे।